0: कहु कहावे।
1: तैसा हरख तैसा सोग,
0: सदा आनंद है नहीं वियोग।
1: तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी,
0: तैसा अमृत तैसी वे खाटी।
1: तैसा मान तैसा अभिमान,
0: तैसा रंग तैसा राजान।
1: जो मिलता है साई जुगत,
0: नानक ऊपर कहिए जीवन मुकत।

0: जब लग जाने मुझते कछ होए
1: तब इसको सुख नाही कोए
0: जब ए जाने मैं किस करता
1: तब लग गर्भ जोन मैं फिरता
0: तारे को वरी मीत
1: तब लग ने चल नाही चीत
0: जब लग मोह मगन संग माए
1: तब लग तबराय दे सजाए
0: तब कृपा ते बंधन टूटे
1: गुर प्रसाद नानक हो छुटे
0: तैस खटे लखोट तावे
1: तिरकन आवे माया पाछे पावे
0: अनुभव विज्ञा के करे
1: नावे थक कब मरे
0: बिना संतोख नहीं को राजे
1: सपन मनोरथ व्यर्थ है सब काजे
0: नाम रंग सर्व सुख होए
1: बड़

0: करे।
1: संत के दुखन आर जा कटे,
0: संत के दुखन जमते नहीं छुटे,
1: संत के दुखन सुख सब जाए,
0: संत के दुखन नरक में पाए,
1: संत के दुखन मत होए मलीन,
0: संत के दुखन सोभा ते हीन,
1: संत के अते गोरखे न कोए,
0: संत के दुखन थान प्रस होए,
1: संत कृपाल कृपा जे करे,
0: नानक संत संग निंदक भी तरे,
1: संत के दुखन ते मुख पवे,
0: संतन के दुखन काग जौन लवे,
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए,
0: संत के दुखन तिल जौन करमाए,
1: संतन के दुखन तृष्णा में जले,
0: संत के दुखन सब को छले,
1: संत के दुखन ते सब जाए,
0: संत के दुखन नीच निचाए,
1: संत दुखी का था को

0: मछली तड़फड़ाए।
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजा,
0: ज्यों पावक के दर नहीं त्रापे।
1: संत का दुखी छुटे अकेला,
0: ज्यों बाढ़ तिल खेत माए दोहेला।
1: संत का दुखी धर्म दे रहत,
0: संत का दुखी सद मिथ्या कहे।

0: मन में सहे।
1: आप उसको कर कछना जनावे,
0: हर हर नाम हृदय सत्यावे।
1: मन विचै सतगुरु के पास,
0: ते सेवा के कार्य रास।
1: सेवा कर तो इन कमी,
0: तिसको होत पर आप स्वामी।
1: अपनी कृपा जिसे आप करे,
0: नानक सो सेवक गुर की मतले।
1: बीच विश्व गुरु का मन माने,
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने।
1: सो सतगुरु जिस हृदय हर

0: बसे हर सोए
1: बलताती ठंडा हर नाओ
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ
1: गोविंद से पूर्ण होए आस
0: पात्र पाए आत्म परगास
1: कर जाए बसे अवनासी
0: कौन नानक काटे जम फांसी
1: तत्व विचार कहे जन सच्चा
0: जन मरे सो काचो काचा
1: आवा गवन

0: संग हजूरे
1: जिसका सातन लिया मिलाए
0: नानक भक्ति नाम समाये
1: सो क्यों मिसरे जे काल न पाने
0: सो क्यों मिसरे जे किया जाने
1: सो क्यों मिसरे जिन सब कुछ दिया।

0: राष्ट्रपति
1: जब कार्य कृष्ण दृष्टिता
0: गुण तब कैसे होता
1: जब तारी आपन सुन समाद
0: संग समात
1: का वर्ण चेन न जापत
0: तब हरंग सो को किसे व्यापत
1: अपने आप पार ब्रह्म
0: तब मो कहां किस होवत पर
1: आपन खेल आवर्ती जा
0: नानक करने हार न दूजा
1: जब होवत प्रभु केवल तनी
0: तब बंद मुकत को किसको गणी
1: जब कैर गम पार
0: तब नरक सरक को कौन अवतार
1: जब निर्गुण प्रभु सह सुभाए
0: तब से सत कहो कि
1: आप अपनी जोत तरह
0: तब कमन ठहर कब कद डरे।

0: सत्यन सुने छो वचन
1: सर व्यापी राम संग्रचन
0: जिन जाता तिस किए रहत
1: सत बचन साधु सब कहत
0: जो ए सोई सुख माने
1: करण करावन हर पाप जाने
0: अंतर वसे बार भी ओही
1: नानक दर्शन देख सब मोही
0: आप सत किया सम सत
1: सगली उत्पत
0: पावे ता करे विस्तार
1: जिस पावे ता एक ओंकार
0: अंत कला लखी ना जाए
1: जिस पावे तिस लय मिलाए
0: कौन निकट कम कहिए दूर
1: आपे आप भरपूर अंतर।

0: अष्टम श्लोक साध के बचन
1: अमृत लाल है रतन
0: संत कमावत हो तो उदार
1: आतरे लोके निसार
0: सफल जीवन सफलता का

0: सुन रसना कहते
1: हर प्रसाद अप्रतारी
0: नानक निवरी कृपा मारी
1: प्रभ की उस्तत करो संत मीत
0: साधाने का गर्जीत
1: सुखमनी सहज गोविंद गुण

कोई तू करता करना मैं ना ही जाह करी ना होई बलहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता कल कला पार पूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवाल

नाम मिले त्रिपतास मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते पागहीन जम पास जो सतगुर सरन संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास

वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पात साही। दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिथे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नाउ ने दयावे ताए। सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलना जी। पंजा प्यारिया चौहान साहबजादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख जलाई देख वाही देख के अमृत कीता

दान प्रसाद दान दान दान सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखां दा मान नीवा मत उची मत पादे राखे आप काल पुरख वाहिगुरु अपने पह दे सदा सहाई दतार जीओ श्री नकाना साहिब समूह गुरधाम समूह गुरधामा दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नू बख्शो निमाणिया दे मान नितानिया दे ताम नियोटिया दी ओढ़ने आसरिया दे आसरा धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर उदास बेनती आप जी ने कृपा रहमत की है। सब तो पहला आप दी प्यारियां संगतां वालों सच्चे पातशाह जीओ संगती रोज सच्चे पातशाह जी सुखमनी साहब दे जाप हुए हैं उपरंत सोदा रहरा साहब जी दे पाठ हुए हैं कृपा करनी पातशाह जी समुचिया सेवावां निभाउंदियां होया भुल चुक दी खिमा बख्शना पढ़ी सुनी बाणी दा भाव आईया संगतां दे दासरियां दे हिरदे ते वसाउणा इसे तरह संगतां तों अपने जापां दी सेवा लैंदे रहना सच्चे पातशाह जीओ कृपा करनी जी किरत कमाईयां विच वाधे पाउणे सब परिवार में सुख शांति नाम दीआं दातां बख्शणियां सब दीआं गुरमत अनुसार मनोकामना पूरियां करनियां। रजिंदर सिंह भिंदर कौर वालों अपनी बेटी सुप्रीत कौर की तंदुरुस्ती वास्ते अरदास बेनती रहमतां प्रथ रखना सुखमीत सिंह वालों सच्चे पातशाह जी कारोबारां दी चढ़दी कला वास्ते जो बिघन आ रहे हैं सच्चे पातशाह जी कृपा करनी जी बिघना का नाश करना अंग संघ सहाई होना सच्चे पातशाह जी कारोबारा में तरक्या चढ़दियां कला बख्शनिया किरत कमाईया में वाधे पाने गुरमत अनुसार मनोकामना पूरिया करनिया सच्चे पातशाह जीओ ऐस वेले बख्शिया खजानिया कड़ा प्रसाद की देख सज के हाजिर है करी पाक साल सोज पवित्रा लाभ भोग हर राय आप जी का सीत प्रसाद जो छके नाम वाहिगुरु वाहिगुरु जपे श्री मुख वाग दी बख्श करो सही प्यारे मेल जना मिले आमदा नाम चेतावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा आग्या पई अकाल की तब चलायो पंथ सब सिखण को हुक्म है

प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी।

मंडल जनक मोति तूपमल आनलो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पवखंड ना तेरी आरती अनहता शुद वाजंत पेरी राहो सहस तव नैन नन नैन है तो एकाओ सहस मूरत ननायक तो ही सहस पद विमल ननेक पद गंध विन सहस तव गंध विचलत मोही सब मैं जोत जोत है सोए तुस्ते चानन सब मैं चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत सुभाव है सुवारती होए हर चरण कमल मकरंद लोभी तुमनो वंदनो मोहि आए प्यासा कृपा जल दे नानक सारंको होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर भव परया मिल साधु खंडल खंडा हे पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हले मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहा साकत हर साध ने जानिया तिन अंतर हमें कंडा हे ज्यो ज्यो चले चुभ दुख पावे जमकाल सह सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर भव सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला यहाँ खाड़ चलो हर लाहा या गै बसन सुहेला औद घट है दिन सरय नारे मन गुर मिलका सुवारे राहो एहो संसार विकार संसे मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस जगाए पिया वै एहो रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बहाजो हर गुरते मने बसेरा निज घर महल पाओ सुख सहजे बौर न हो गो फेरा

के प्रभु सात अष्टपदी जय मात पिता सुतमीतना भाई मन उहा नाम तेरा संग सहाय जय महाप्यान दूत जम दलै तय केवल नाम संग तेरा चलै जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम किन माहे उधारी अनक पुना चरण करत नहीं तरा हर को नाम कोट पाप पर हर गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाव सुख नेरे सगल सठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंद ना पर हर का नाम जपत नेसु तरा अनक माया रंग तिख ना बुझावे हर का नाम जपत अगावे जे मार्ग ए जात अकेला तै हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याइए नानक गुरमुख परमगत पाइए छूटत नहीं गोड लग बाही नाम जपतै पार पराही अनक बिगुन जाए संगारे हर का नाम तत्काल उधारे अनक जोन जरमै मर जाम नाम जपत पावै विश्राम आमें।

गीत शुद्ध गाय काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊंच नानक नाम द्रय पसद बहमूच बहुत सियान जमका पाओ व्यापे अनग जतन कर त्रिशिन्न त्रप है।

उसते चौगन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सरबर होवत जान अनेत बिरकी छाया सिव रंग लावे बिन सह मन पछतावे जो दिसै सो चालन हाल पटरियो तय अंध अंधार बटाऊ सिव जो लावे ने ताकु हाथ न आवे केहे मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानका बलय लाई मिथ्या तन धन कुटम सबाया मिथ्या हमे ममता माया मिथ्या राज जोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता मिथ्या ध्रुव मोभिमान मिथ्या सुप्रकृत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जीव जब जब जीव हर के चरण मिथ्या सरवण मर निंदा सुनहे मिथ्या स्पर दर्भ को हिरे मिथ्या नेत्र पेख पार त्रिपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को ताव मिथ्या मन पर लोभ लुभा मिथ्या तन्ने पर बुकारा मिथ्या भास लेद बेकार बिन बुझे मिथ्या सब है सबल दे नानक हर हर नाम लय वृथि सागत की आरजा साज बना के अब सुचा बिरथा नाम बिना धन अंध मुखा बता के दुर्गंध बिन सिमरन दिन रह न ब्रेथा बेहाये मेघ बनाजो खेती जाए गोविंद भजन मिन ब्रिथे सब काम ज्यो कृपन के निरार दाम धन धन तेजन जे घट बस्यो हर नाम नानक ता के बल बल जाओ रह तबर कशबर कमावत मनी प्रीत मुखो गंड लावत जानन हार प्रभु प्रवीन बाहर भेखना काहू भीन प्रभु देसे आवना करे आवत जावत जन्मै मरै जिसके अंदर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम पाने तन प्रभु जाता नानक कुंजन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे बाने आपे आप करत मेरा किसे दूर

अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा दृढ़ेप जैसे जलमय कमल अले ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी का दृढ़ समान जैसे राजरंग को लागे तुलपवान ब्रह्म ज्ञानी का तीर्ज एक जो वसुधा कऊ खोदा कऊ चंदन ले ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव नानक जो पाव का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल थे निर्मला जैसे

ब्रह्मज्ञानी की मित गौन बखाना ब्रह्मज्ञानी की गात ब्रह्मज्ञानी जाना ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता।

प्रकाश है कटकड़ पून ब्रह्म प्रकाश अपनी बनता बनाई नानक जीव देख बढ़ाई इसका बाल नाई सहाद करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तस भावे सोई फंथियो कबू ऊंच नीच मह बसा कबू सोख हर खरंग हसा कबू निंद चंद व्यवहार कबू ऊब आकाश पयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानका मिलावन हार कबू निरत करे बापात कबू सोय रहे दिन रात कबू महाक्रोध विकराल कबू सर्व की होत्र बाल कबू है बहे बड़ राजा कबू विकारी निज का साजा कबू अब कीर्त में आवे कबू भला भला कहावे जो पर्व राखे तिवि ही रहा गुर प्रसाद नानक सच कहा कबू है पंडित करे बखियान कबू मोन धारी लावे ध्यान कबू तार तीर्थ स्नान कबू से साधक मुख ज्ञान कबू कीत हस्त पतंग जिया अनंग जोन पर मैं परमिया नाना रूप जो स्वंगी दिखावे जो पर भावे तिव न चावे जो तिस भावे सोई होए नानक दूजा वरना कोय कबू सा संगत अपावे उस स्थान ते बाहुर न आवे अंतरे ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश मंदन नाम रते करंग सदा बसे पार ब्रह्म कै संग ज्यो जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभ के सदगुरबान सलोक

अनंग तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार अनंग जतन कर आत्म नहीं दरबा अर दरगे को कैसे गवे आपस को जो भला गावे तसे भला ही निकट न आवे सर्व की रेन जागा मन होए गह नानक ताकि निर्मल सोए जबलक जाने मुझते कश होए तब इसको सुख नाही कोए जबे जाने मैं किश करता तबलक गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी में तबलक ने चल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राये दे सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हम छुटाए सहज घटे लग उड़ता वे तृप्तना आवे माया पाछे पावे अनक भोग भिख्या के करै न तृप्तावे खप खप मराए बिना संतोख नहीं गऊ राजे स्वप्न मनोरथ वृथे सब गाजे नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसे प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाव करण करावन करने हास क्या कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभु सोए जो किस कीनो सपना

संत गए दुखन दे मुख पवे संतन गए दुखन गाग जो लवै संतन गए दुखन सर्ब जोन पाए संत गए दुखन त्रिगत जोन किरमाए संत गनन गए दुखन दृष्णा मैं जलै संत गए दुखन सबको शलै संत गए दुखन ते सब जाए संत गए दुखन नीच नीचाए संत दुखी का थाउ को नाहे नानक संत भावता लय मिलाए संत गा निंदक महत ताई संत गा निंदक हिंटकन ना पाए संत दुखी का थाउ को नाहे नानक संत भावता ओए भीगत पाहे संत गा दुख संत गा

हो जाए अष्टपदी मानु की टेक प्रीति सब जान देवन को कह भगवान जिसके दियरा अगाए बार न दृष्णा लागे आए मारे रख मारे रख एक आप मानु कह जनाई हाथ जिसका हुक्म सुखोए जिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक विघ्न न लागा गोए उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सदव्यवहार निर्मल रसनामृत पीयो।

भक्तमति सर्वप्रख भगवान सर्वकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हरके गुण गाय अनकराज भोग बढ़ियाई हरके नाम की कथा मन पाई बहु भजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करणी सोभा तरमंत हृदय बसे पूर्ण गुरु मंत।

भाय स्वंदर सो बाहर आनंद कट कृपया प्रया भगवान धर्माया आकाश पायाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंदिन बरबदय पार ब्रह्म जैसी आगे तैसा कर्म पौन बाणी बंद्रमाए चार गुण दसे समाये तिस्ते भिन्न ही कोठाऊ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमृत मह देख ससीर सुर नख यात्र में एक बाणी प्रभगी सबको बोलाय आप डोलक बहु डोलाय सर्व कला कर खेला।

चेन्दयासन त्यागो तरंग संजना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती कर हो सास अगन सागर तरो हर तन के पर लेहो पंडार नान गुर गुर पूरे।

सोचह सोच न हो वही जे सोची लख वार चुप है चुप न हो वही जे लाए रहा लिवतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपा लख हो हे ता एक न चलै नाल किव सचियारा होइए किव कूड़ै तुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल।

जाय ना चित्र न मित्र परे है पवित्र पृथ्वी से अदिश्य अदृश्य अकृश्य भगवती शांत व प्रसाद कहते क्या छे अजय देश है क्या भिज पिहसे क्या गंज कर्म है क्या पांच परमे

है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्मवास है, जासके जास है, पजांग प्रया छंद। नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग सांत रूपे,

कीर्त कर्म के बिछुड़े कर कृपा मिल हो राम चार कुंट दह दिस पर में थक आए प्रभु की साम तेन दुदै ते बहारी किते न आवे काम जल बिन साह कुमलावती उपजे नाही दाम हर नहा न मिलिए साजन कत पाइए विश्राम जित कार हर कंतना प्रगटी पाठ नगर से ग्राम सर्व सिंगार तंबोल रस सान देही सब खाम प्रभ स्वामी कंत विहुनिया मीत सज्जन सब जाम नानक की बेनंतिया कर कृपा तीजे नाम हर मिलो स्वामी संग प्रभ जिसका निःचल धाम हर की वडियाई हो आख ना साका हो मूर्ख मुग्ध नीचान जन नानक को हार बख्श लै मेरे स्वामी।

0: श्री हर कृष्ण ते आइए, जिस दिठे सब दुख जाए। श्री हर कृष्ण ते आइए, जिस दिठे सब दुख जाए। श्री हर कृष्ण ते आइए, जिस दिठे सब दुख जाए। श्री हर कृष्ण ते आइए, जिस दिठे सब दुख जाए।
1: तेग बहादुर सिंह करनो नित्य आवे ताई सब थाई।

सब धाई होए सहाय। आयो शरण दुहारी, मिले सुख नाम हर सोब, चिंता लाए हमारी। सतगुर आयो शरण तुम्हारी, मिले सुख नाम हर सोब, चिंता लाए हमारी।

0: हम मैले तुम उज्जल करते, हम निर्गुण तुम दाते, हम मूर्ख तुम
1: चक्र से आए,
0: तू सब कला का ज्ञाता, माँ दो
1: हम ऐसे तुम ऐसा,
0: माँ दो
1: हम ऐसे तुम ऐसा,
0: हम
1: पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा रहा,
0: तुम सब साजे
1: साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राण, निर्गुणियारे गुण नहीं कोई, तुम दान ले हो मरवाना, तुम करो बला बलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विदाते, तुम राखो अपने बाला,
0: तुम दान अटल सुल्तान, जी जन सब जाचे,
1: तुम निदान अटल सुल्तान,
0: राख संतन के पाछे,
1: कौन नानक है हवाला, राख संतन के
0: गौड़ी महल्ला पन फिर कर
1: बैसो, हर जन प्यारे सतगुरु तुम रे।

0: शरण परे प्रभु
1: अंतर जामी नानक
0: गौड़ी मोहल्ला पंचम तुम दाते ठाकुर कृपाल नायक कसम
1: हमारे निमक निमक तुम ही प्रतपाल बारिक तुम रेता
0: बेशुमार
1: बेअंत स्वामी
0: तिरुवंतना के नहीं रहे कोट
1: बराद हमारे खंड अनेक विधि समझाओ
0: हम अज्ञान अल्प मत हो
1: तुम अपन विरह
0: तुमरी
1: शरण तुम्हारी आस
0: तुम ही
1: सजन सहे राखो राखन हार दयाला नानक कर के
0: जाति शान
1: गोविंद।

गोर हाथ तरयो मेरे माथा, जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुर नाम दियो रिन लाथा, मेरा ही अरे रतन नाम हर बसया, गुर हाथ तरयो मेरे माथा, जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे।